0: ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಮಹಾಪವರ್ ರೇಡಿಯೋ.
1: जी दोस्तों सारे दोस्तों का दुआबा रेडियो मंच उत्ते निघा स्वागत है। लैके हाजर हाँ फिर तो एक बार तुहाडी कचहरी च नवा नवेला प्रोग्राम जिंदगी

0: जिन कल तड़पना पड़ी जिनकी याद में,
1: वाह
0: तड़पना पड़ी जिनकी याद में।
1: जी,
0: हाँ जी,
1: थैंक
0: कल
1: यू जी।
0: तड़पना पड़ी
1: हाँ जी,
0: जिनकी याद में, जिंदगी

0: शालारे ने परी तो खाली।
1: क्या बात है,
0: थैंक यू सो मच।
1: क्या बात है जी। नजारा आ
0: शुक्रिया
1: गया दोस्तों के सुनेहे, ते तुसी सानू
0: जी,
1: बखरी ही दुनिया दे विच लै गए जी, किथे सियासत लड़ाइयां झगड़े खून खराबे एक दूसरे दे उत्ते तोहमता ते दूसरे पासे प्यार मुहब्बत दा स्वर्ग दी गल, ते स्वर्ग दे विच सानू नरक चो कढ के स्वर्ग च लै के चले हो जी।
0: शुक्रिया भी तू
1: हां
0: संदीप
1: जी
0: जी,
1: मामा जी
0: थैंक यू सो
1: नजारा आ
0: मच,
1: गया जी, सच्ची
0: हमेशा
1: गल
0: हमेशा
1: है।
0: जींदे वास्ते रहो।
1: थैंक यू
0: थैंक
1: जी,
0: यू सो
1: थैंक
0: मच।
1: यू, सत श्री अकाल जी, शुक्रिया जी। जी दोस्तों ऐसा जी दुबई तो मोहम्मद जी क्या बात है, नजारा बन गए ने, दोस्त भी पूरा एप्रिशिएट कर रहे ने, ते बहुत बहुत शुक्रिया सारे दोस्तों का। ते लो दोस्तों विदेशी खबरां दे वल नूं दबा दब भजदे आ, समा भी बड़ी तेजी दे नाल भजदा जांदा, 20-25 मिंट आपां होर लाउणे आ जे। ते खुशी दी गल इह वी है कि इराक दे विच इन्ना कुछ करन तों बाद, होण तों बाद, दबदबा जां लड़ाइयां झगड़े होण तों बाद, अमेरिका हुण वापसी कर रहा, चाहे अफगानिस्तान तों कीती है ते वापसी हो चुकी है हुण, ते सद लई है वापस फौज अमेरिका ने 20 साल दे बाद। अमेरिकी फौज बुधवार 30 सितंबर 2026 तक अज जानी इराक दे विच अपने आखिरी फौजी अड्डिया नूं खाली करके पूरी तरह बाहर निकल रही है। इस दे नाल ही इराक दे विच 20 सालां तों वध समय तों चली आ रही जिहड़ी है अमेरिकी फौजी मौजूदगी दा अंत हो गया। इस वापसी की योजना 2024 जिहड़ी सी विच उस समय दे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन दे शासन काल दे दौरान तय कीती गई सी, जिस नूं हुण डोनाल्ड ट्रंप दे प्रशासन दे वल्लों अंतम रूप दित्ता गया। सैनी साहब एक मिनट होल्ड रखना, मैं खबर कंप्लीट कर लवां। ईरान ते उसदे हमायती जिहड़े ने शिया अतवादी धड़िया ने इराक दे विचों अमेरिकी फौज की इस वापसी नूं अपनी वड्डी इतिहासक जित दस्सिया। इराक दे विच इस्लामिक जिहड़ी है रेजिस्टेंस दे कमांडर अबू मुजतबा अली मुजतबा अल जासीरी ने कहा है कि यह इराक की जित है, इतिहास के अमेरिकी कब्जे का जिहड़ा काला पन्ना बंद हो रहा है। इराकी सुरक्षा माहरां दे अनुसार अमेरिकी फौज जिहड़ी है उहदे जाण दे नाल इराक दे विच जो खालीपन पैदा होवेगा उसका जिहड़ा सीधा फायदा है ईरान नूं मिलेगा, क्योंकि अमेरिकी फौज खेतर दे विच ईरानी प्रभाव नूं रोकण लई इक संतुलन का जिहड़ा सी काम करदी सी। उत्थे कई माहरां दा इह वी मन्नणा है, कहना है कि इराक अजे अपने दम दे उत्ते पूरी सुरक्षा की जिम्मेवारी सांभण दे लई तैयार नहीं है। कुरदिश जिहड़े लोग ने उत्थे दे, चाहे वह तुर्किश कुरदिश ने ते चाहे अपने इराकी कुरदिश ने, जो अपना खिता मंगदे ने। कुरदिश कमांडर सिरवान बारजानी ने दस्या कि अमेरिकी वापसी की खबर तो बाद पिछले दो हफ्तों तो ISIS दे स्लीपर सैलां दीयां गतिविधियां दे विच तेजी देखी गई है, ते इराक नूं अमेरिकी इंटैलीजेंस ड्रोन सपोर्ट अते लॉजिस्टिक मदद बंद होण दे नाल ISIS नूं मुड़ संगठित होण दा मौका मिल सकदा है। उत्थे ही किरकूक दे जिहड़े सीनियर सुरक्षा अधिकारी कर्नल खालिद अल ਬਿਆਤੀ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ISIS ਇਸ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੀ।
2: ਹਾਂਜੀ ਮਾਫੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ
1: ਨਹੀਂ
2: ਆਉਣਾ
1: ਕੋਈ
2: ਪਿਆ,
1: ਗੱਲ
2: ਜ਼ਰੂਰੀ
1: ਜੀ
2: ਸੀਗਾ।
1: ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ
2: ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਸਰ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਰੂਹ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਈ
1: ਬਿਲਕੁਲ
2: ਧਰਮ ਨਾਲ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਸੁਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ AI ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬਈ ਸਰਦੀ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਲਾਈ, ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ AI ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਟੀ

0: गीत को स्वामी जी ने इस गीत तो बाद एक गीत असी जोगिंदर पाल मल जी तो होर सुनना चाहांगे जेड़ा के रंजीत कौर साबी जी का ही लिखा होया है। ते ए साडे अज दे प्रोग्राम गौंदी शाम दा आखरी गीत होएगा। ते इस जिहड़ा हुण गीत लेके हाजिर हो रहे ने जोगिंदर पाल मल जी, ए है मेला चार दिनां दा, यानी कि जिंदगानी जिहड़ी आ सिर्फ चार दिनां दा मेला है। इस तों बाद ए जिंदगानी नहीं रहनी। इस जिंदगानी नूं जिहड़ा चार दिनां दा मेला किवें बतीत करना चाहिदा आ, इस गल्लां नूं लैके जिहड़ा आ रणजीत कौर साबी जी ने लिखिया है ते आवाज दित्ती आ जोगिंदर पाल मल जी ने। जोगिंदर पाल मल जी, तुहाडा एक बार फिर दुआबा रेडियो दे मंच ते निघा स्वागत है। गौंदी शाम दे स्रोते तुहाडी बेसब्री नाल अड़ीक कर रहे ने, आओ ते उन्हां दा जिहड़ा आ मन परचावा करो। जोगिंदर पाल मल जी।
1: हसला नचल है गाल दे मेला चार दिना दा, रुसिया यार मना लवे मेला चार दिना दा, रुसिया यार मना लवे मेला चार दिना दा। हसला नचल है

0: सी सुन ससड़िए, नंदी जैसे नैन पोलिए ससड़िए, मेरा लगदा पुतले सुननू है नी, मेरा लगदा पुतले सुननू है नी, तेरा लगदा कंत पोलिए नू अड़िए, आले दुध दा छन्ना पोलिए नू है नी, रुसे अकांत मनानी पोलिए नू अड़िए, आले दुध दा छन्ना तो शी पाया वे, कुटवाटी पी नंदी दे पाया वे, कुटा वाटी पी नंदी दे पाया वे, दुध दा छन्ना ना पीवा मुटियारे नी, कोई वाली गल सुना नी पोलिए ना रे नी, दुध दा छन्ना ना पीवा मुटियारे नी, कोई वाली गल सुना नी पोलिए ना रे नी, निक्की हुंदी नू छड़ गयो शी पाया वे, निकी हुंदी नू छड़ गयो शी पाया वे, हुण मैं होई मुटियार नंद दे पाया वे, हुण मैं होई मुटियार नंदी दे पाया वे। धन्यवाद जी।
1: कामे फिल दी अगली शायरा है अमनदीप कौर जलंधरी। अमनदीप कौर जलंधरी जी साडी कामे फिल दे विच तकरीबन आउंदे रहिंदे ने, अक्सर आउंदे रहिंदे ने, ते इस दे नाल दी नाल ओ जिथे अपनियां कवितावां लिखदे ने वख-वख समें ते ओ अखबारां दे विच लेख भी लिखदे रहिंदे ने, ते उहनां दी इक लिखी हुई कहानी दे उत्ते जिहड़ी आ ओ शॉर्ट फिल्म भी बणी है। अमनदीप कौर जलंधरी जी थोड़ा स्वागत है।
2: अमनदीप कौर जलंधरी वालों दुआबा रेडियो दे सारे स्रोतियां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। हरबंस सर जी आप नूं भी सत श्री अकाल जी। मेरी अज दी रचना है सदरां दा महल। सदरां दा महल होया चकना चूर नी माए, सदरां दा महल होया चकना

ज्ञान दी जोत जगावन दे लई अंदर चात लगाउणा चंगा, मगर किसे दे लगन नालों अपना राह बनाउणा चंगा। मन बता दे पले दी खातर जावर नाल टकराउणा चंगा, उस खुदा दी रहमत अंदर मनुखता दे कम आउणा चंगा। हक सच ले

मैनू जानी ना तिला भौकर बन के हूं जदूं जे आकड़ छड़ी ना अपनी तैनू नक्शे तो पूंज देऊं जे आकड़ छड़ी ना अपनी तैनू नक्शे तो पूंज देऊं मैं पक्षियां दी झल नहीं।

0: हारी गबरुआ हिम्मत ना हारी बेलोका।
1: सिंह दी रचना जिहड़ी कि जोगिंद्रपाल मल जी ने सांझी कीती है। इस तों बाद हुण मलकीत बुल्ला जी साडे एक शायर ने उहनां दी धी है सिमी सोतरा जी ओह दिल्ली नूं जिहड़ी बंगार पाउंदी हुई एक जिहड़ी रचना लै के हाजिर हो रहे ने। सिमी सोतरा जी दा दुआबा रेडियो दे प्रोग्राम गौंदी शाम दे विच निघा स्वागत है। सिमी सोतरा जी जी आयां
2: लेके असी दिल विच आए आ जनून नी रद्द करवाने तेरे काले एक कानून नी लेके असी

गल तेनू साड़ी मननी ही पैनिया, आकड़ जो तेरी पननी ही पैनिया। गल तेनू साड़ी मननी ही पैनिया, आकड़ जो तेरी पननी ही पैनिया। असी दिन रात

मारने लगा के पंजाब देख ले, कई कई दिन बेहिसाब देख ले। तारने लगा के पंजाब देख ले, कई कई दिन बेहिसाब देख।